खिलत बसले अदलवात पुरात संदलता हमक अल्लम बुगतारान खुमिंगान खासा तावला हसने तस्तरे अरालात असर तलसने सोलात इलो यप्ती बालवाल युवी असोवा खुमिंगन बेतलान यो यारो तुलस्ते शोच तुवरात फिलखिलने अमस्खात शागवलवल पाशोवालते एर्मनुगी खेशिक सिलोगा मिनी एसन दुर्मार शिर्गी बुलं बलगाबो लिवुबी हिलचेना शिर्गीम बाक्षिन चक्षिन यांगस्त शिर्ग बलला तारी मुन बुलं बेना चागी हुला चागी हुला चेना चा थोल बालचे ती मुना यारो बेना और शिर बल हिलचिक सिलोगा यार चेरलिगिन हेर चेरलिगिन समयाच खोंगमिन घेरुस्त शिर्ग देनबा